एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं।

श्री सरयू महारानी के, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के, समस्त पूर्वाचार्यों के, सर्व संत वैष्णव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गो माता के, भारत माता के, प्रातः

भर्जनम भो बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनय यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः।

गोविंद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान को अति पुरातन तथा सनातन बतलाते हैं। वह हर युग में आवश्यकतानुसार स्वयं के प्रकट होते रहने की

श्री भगवान कर्म अकर्म तथा विकर्म की गहनता स्पष्ट करते हैं। वे यज्ञ की महिमा का विवेचन करते हुए निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं।

श्री गोविंद ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पांडव, अपने हृदय में स्थित अज्ञानी संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर रण के लिए तैयार हो।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: सुनिए रूपक कावेरी के किनारे किनारे।
1: ओम चंद्र पुष्कर मध्यस्था यही नमः। ओम चतुरानन पुत्रिका यही नमः। ओम चोलदेश जनोद्धार ग्रीष्मकाल प्रवाहिनी यही नमः। ओम चुनचुक्षेत्र समानी
2: दक्षिण देश में कावेरी प्रसिद्ध नामी है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ के नीचे उत्पत्ति होती है। कावेरी तुला मास में ऊपर उगती है, बुलबुलें ऊपर आती है। उस समय लाखों यात्रीगण यहाँ आकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ पीकर चले जाते हैं।
3: हाँ, मैंने भी स्नान किया, तीर्थ पान किया, पर अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो इस नदी के किनारे किनारे सागर संगम तक जाऊंगा।
4: नमस्कार श्रीमान जी।
3: नमस्कार।
4: आपको इस क्षेत्र का परिचय करा दूं?
3: हाँ,
4: मैं यहाँ का अधिकृत गाइड हूँ।
3: हाँ, मेरे साथ कावेरी नदी के किनारे किनारे चलेंगे।
4: हाँ,
3: आपका पारिश्रमिक मैं दे दूंगा।
4: क्यों नहीं, मुझमें तमिलनाडु के क्षेत्रों में यात्रा करने की इच्छा भी है।
3: अच्छा,
4: एक पन दो काश हो जाएगा।
3: आपने सुना क्या? अष्टोत्तर पूजन में एक अंश चोल देश
4: को जल द्वारा उद्धार कर ग्रीष्म काल में भी प्रवाहित होने वाली नदी है। मंत्रकार ने कावेरी की जीवनदायिनी शक्ति को कुछ ही शब्दों में भर दिया है।
3: अच्छा,
4: चलिए आपको कावेरी की कहानी सुनाएंगे।
3: हाँ।
4: नमस्ते बहन जी।
5: नमस्ते।
4: आप इन्हें कावेरी की कहानी सुनाएंगी?
5: क्यों नहीं, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न कावेरी राजा कवेर की पालित पुत्री थी। उन्हें ऋषि प्रवर अगस्त्य को विवाह में देते समय राजा ने अनुशासन रखा।
6: आप मेरी पुत्री को छोड़कर कभी दूर न हो। आप इस अनुशासन को तोड़ेंगे तो कावेरी आपको छोड़ देगी।
3: तो अगस्त्य ने अनुशासन तोड़ा होगा?
5: हाँ, विवशता में। एक बार वे वेद शास्त्रों के शास्त्रार्थ में इतने मग्न हो गए कि कावेरी का विस्मरण सा हो गया। जब वे घर आए वह नहीं थी। उसने तलकावेरी के इस कुंड में देहांत कर लिया था।
3: अगस्त्य जी बड़े व्यथित हुए होंगे।
5: हाँ, वे व्यथित होकर जहां तहां भटकते रहे। फिर इस जलकुंड पर आकर उन्हें पता लगा कि कावेरी यहाँ पर जलमग्न है।
3: अच्छा।
5: उन्होंने कावेरी से बड़ा अनुनय किया।
3: जिसका देहांत हो जाए वो फिर लौटते कैसे?
5: यह ऋषि का प्रभाव था और कावेरी की शक्ति थी। उसका अर्धभाग लोपा मुद्रा के रूप में अगस्त्य जी को मिला। शेष अर्धभाग प्रतिवर्ष तुला संक्रमण के अवसर पर यानी अक्टूबर 17 तारीख को नदी के रूप में यहाँ से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु को जीवन धारा प्रदान करता है।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्री जी आगे बढ़े।
3: कहाँ?
4: यहाँ से ब्रह्मगिरी तक कावेरी गुह्य वाहिनी है।
3: हाँ।
4: यानी छिपकर बहती है।
3: अच्छा अच्छा।
4: वहां से बह निकलती है। ब्रह्मगिरी में भ्रुगुंड महर्षि स्थापित ब्रह्म विष्णु और शिव के मंदिर हैं।
3: अच्छा।
4: फिर हम वहां से कृष्णराज सागर वृंदावन चलेंगे।
3: अच्छा चलें।
4: यह है कृष्णराज सागर। यहाँ आपको दो व्यक्तियों से मिलाएंगे। मिलिए इनसे। इनका शुभ नाम है श्री कृष्ण। ये यहाँ के मुख्य अभियंता हैं।
3: नमस्कार।
7: इनदिगे लक्ष्मण तीर्थ मत हेमावती नदीगळु सेरुवा संगम
8: लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती के संगम स्थान पर सर एम विश्वेश्वरैया जी की योजना के अनुसार 1931 में बांध बनाया गया। यह मैसूर शहर से 20 किलोमीटर दूर पर है। इस बांध का जलानयन प्रदेश 10,619 किलोमीटर है। यहाँ से सबसे अधिक जल निकास का गात्र 2,90,000 क्यूसेक्स है। इस बांध का जल ग्रहण सामर्थ्य 48.335 TMC होगा। सिंचाई के लिए बाई ओर विश्वेश्वरैया नहर है और दाई ओर देवराज अरस नहर है। कृषि का क्षेत्र आजकल 1,96,000 एकड़ तक विस्तृत हो गया है। इस नहर के जल से श्रीरंगपट्टन, पांडवपुर, मंड्या, नागमंगल, हेगड़े देवनकोटे, मैसूर और तिरुमकुडलु नरसीपुर तालुक के किसान धान, ऊख आदि की कृषि करते हैं।
3: कितना सुंदर स्थान है। यहाँ का उद्यान भी बहुत सुंदर है।
4: आप यहाँ के फुवारों को और बिजली के वर्णमय कांति को देखकर चौंधिया जाएंगे।
3: अच्छा।
4: हर इतवार को और छुट्टी के दिनों में संगीत की लहरों के साथ फव्वारों का जल नृत्य करता है। चलिए फव्वारों का संगीत नृत्य शुरू हो गया।

0: इनसे मिलिए।
1: ये हैं श्री रामू, बागवानी विभाग के एक अधिकारी हैं। इस उद्यान में इन्होंने 12 साल सेवा की है।
2: नमस्कार श्री रामू जी, आप वृंदावन के फूल पौधों के बारे में कुछ बताएंगे?
3: आ गार्डन के तकनते फाउंटेन से उल्कोट्रो।
2: इस उद्यान के योग्य फव्वारे बनाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई, बत्तियां लगाई गई, प्रकाश व्यवस्था हुई। इन तीनों का संयोजन यहाँ स्वर्ग सा दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगल में फलों का एक बगीचा भी है। लगता है कि यहाँ आने वालों को ऐसे फल खाने को प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य था। कावेरी के तीर पर फलों के इस बगीचे को बनाने का उद्देश्य मुझे लगता है कि इसके पके फल पानी में गिरे, उसके बीच बहकर तीर प्रदेश के खेतों में पहुंचे और वहां फलों के और नारियल के पौधे उगे।
4: कृष्ण राज सागर और वृंदावन देखकर मुग्ध हो गया।
0: अब तो हम मैसूर वापस आ गए हैं। मैं आपकी बहन श्री डी देवराज से करा दूंगा, वे यहाँ के पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं, यहाँ के मंदिरों के बारे में बताएंगे।
4: अच्छा,
5: रंगनाथ जी की जो मूर्ति इधर है वह कर्नाटक के प्रसिद्ध राजवंश होयसल के जमाने की है। तलकाड़ में भी कई मंदिर है, उनमें श्री वैद्यनाथेश्वर और श्री कीर्ति नारायण प्रमुख है। वे 12वीं शताब्दी के है। कावेरी नदी तट पर सोमनाथपुर में भी एक प्रसिद्ध केशव जी के मंदिर है।
4: आप कहाँ ले चलेंगे?
0: चलिए शिवाना समुद्रम। ये देखिए, इस नदी पर ये पहला निर्झर है यानी जलप्रपात। इससे आगे कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो होगेनकल के पास भी एक प्रपात बनाती है। यहाँ कावेरी इस प्रपात के पास एक द्वीप बना लेती है। प्रपात के दो भाग हैं, गगन चुक्की भर चुक्की। अब आप जिस प्रपात को देख रहे हैं वो गगन चुक्की है।
4: वाह, कितना भव्य! ऊपर से गिरता पानी नीचे पहुंचने तक फुव्वारे उछलता है। न जाने कब से इन वस्तुखंडों को वो काटता नीचे गिर रहा है।
0: यहाँ के कार्यकारी अभियंता से मिले तो इस प्रपात की शक्ति का वास्तविक परिचय होगा। ये हैं श्री रेवण्णा जी।
4: नमस्कार।
6: द फॉर्मर महाराज ऑफ मैसूर विद द असिस्टेंस ऑफ दिस आई मीन ब्रिटिशर्स एंड
7: मैसूर रियासत के भूतपूर्व महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता से 25 साइकिल वाली बिजली कोलार सोना खानों को पहुंचाने के लिए इस जल बिजली परियोजना की कल्पना की। पहला विद्युत उत्पादक केंद्र 1902 में लगाया गया। इस उत्पादन केंद्र का नाम भूतपूर्व मैसूर राज्य के दीवान शीशाद्री अय्यर के नाम पर रखा गया।
4: यहाँ कितने जनरेटर हैं और इनकी उत्पादन शक्ति क्या है?
7: यहाँ 10 संयंत्र हैं और इसकी कुल उत्पादन शक्ति 42 मेगावाट है। ये एशिया भर में अपने ढंग का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। यहाँ से बिजली पहुँचाने के लिए कोलार सोने की खानों तक जो लाइन लगाई गई वो समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा लंबी थी।
0: इस केंद्र का महत्व इसलिए भी है कि बेंगलोर शहर को पेयजल का अधिक भाग यहाँ से जाता है। यह व्यवस्था न होती तो शायद बेंगलोर वासी करीब 50 लाख की जनता में 60% को जल ही नहीं मिलता।
6: वाटर इज ऑल्सो बीइंग फेड टू बेंगलोर थ्रू पाइपलाइंस फॉर बेंगलोर।
7: यहाँ से बेंगलोर को पानी भेजा जाता है। पहला चरण तो समाप्त हो गया, दूसरा तीसरा भी हो गया, चौथा बन रहा है।
6: द फोर्थ स्टेज आल्सो।
0: अब आप मंडा जिले में नहरों के किनारे चलेंगे, यहाँ की हरियाली देखनी हुई।
4: सर्वत्र धान के खेत, कहीं कहीं गुड़ की सोनी सोनी गंध, मेहनत कत मजदूर और किसानों के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहटें। कावेरी माता सचमुच माता है। फिर मुझे अष्टोत्तर मंत्र की एक पंक्ति याद आती है, तरंगावली समृद्धि मृदु बालुका शोभायता नाम।
0: कावेरी के तरंगों ने खेतों में भी शस्यों के तरंग भर दिए हैं, यहाँ की मृदु बालुका में भी जीवन भर दिया है।
4: वाह,
0: इसका उदाहरण है मंड्या के पास का एक गांव होड़लू। ये हैं श्री चौड़ा।

0: हड़प्पा जी भूतपूर्व शासक और मंड्या जिले के एक प्रगतिशील किसान।
1: 31 ದಿನದ ಈಚೆಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕೆನಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಳಿನಾಲುಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಭತ್ತ ರಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ
0: 1931 ಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಹರ್ ಕೆ ಆನೆ ಸೆ ಯಹಾ ಏಕ್ ಧಾನ್ ವಗೈರಾ ಕಿ ಖೇತಿ ಹೋನೆ ಲಗಿ ಅಬ್ ಯಹಾ 3 ಚೀನಿ ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೈ ಆಜ್ ಭಿ ಯಹಾ ಕೇವಲ 1/3 ಜಮೀನ್ ಹಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಕಾ ಲಾಭ ಉಠಾ ಸಕಿ ಹೈ ಆಜ್ ನಾಗಮಂಗಲ್ ಮೇ ಜೋ ಸ್ಥಿತಿ ಹೈ ಪಹಲೆ ವಹೀ ಸ್ಥಿತಿ ಯಹಾ ಥಿ जमीन अवसर थी। अब साल में 3 फसल लेते हैं और इसी गांव के मुद्दे गौड़ा जी भी यही कहते हैं।
2: ये मंडे जिले अत्यंत बरगाल के जिले मलये
3: मंड्या जिले में हमेशा अकाल पड़ता था, बारिश नहीं के बराबर थी। लोग यहाँ से दूसरे स्थानों पर बसने जाते थे। हमारा सौभाग्य था कि विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी पर बांध बनाकर इस जिले के 5-6 तालुकों को सहूलियत दी।
4: सुना है नहर आने से पहले श्रीरंगपट्टनम वाले मंडिया में लड़की नहीं ब्याहते थे क्योंकि पीने के पानी के लिए बहुओं के सिर पर कलसा रखे मीलों जाना पड़ता था।
5: आपने बड़े ध्यान से सुना।
4: हाँ
5: चलिए हम आगे बढ़ें। कावेरी ने कर्नाटक को सरसब्ध तो बनाया पर जैसे अष्टोत्तर मंत्र को आपने दोहराया इसने चोल देश का जलोद्धार किया। ग्रीष्म काल में भी वहां के बहुत सारे प्रदेश विशेषकर तंजावुर और तिरुचि के क्षेत्रों की शोभा बढ़ाई। इसीलिए तमिल काव्य शिल्पाधिकारम के कर्ता इलिंगो अडिगल ने इसकी महिमा गाई है।
6: तिंगल माले वेणकुडयान सेन्नी सेंगोल अदु ओच्ची गंगे तन्ने पुनर्ंदालुम पुलवाय वाळी कावेरी
7: चांदनी का धवल छत्र ताना है गंगा ने कविता बनकर बह निकली है कावेरी जलधारा ने
6: गंगई तन्नै पुनर्ंदालुम पुलवादोळिदल कयक्कण्णाय मंगई मादर पेरुंगर पेंरु अरिंदेन वाळी कावेरी
7: गंगा की प्रशंसा पाकर भी तू नहीं छोड़ती अपना पथ अस्खलित ब्रह्मचारिणी सदा रही समृद्धि दायिनी।
5: तिरुचि के सेंट जोसेफ कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक प्रणतार्थी हरन तमिलों की दृष्टि से कावेरी को देखते हैं।
8: तमिल में का शब्द का अर्थ है पूंजोले अर्थात वाटिका। विरी शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। यह नदी बहते समय सुनहरी अणुओं को लेकर आगे बढ़ने के कारण कावेरी नदी को पुन्नी भी कहते हैं। तमिल काव्यों में कावेरी के बारे में कई उद्धरण प्राप्त है। यथा पट्टिनपाले में वान पोईपिनुम तान पोय्या मलै तलय कडर कावेरी पुनल परंदु पोन कुळिक्कुम बरका हो ना हो मै तो बहुति रहूंगी पर्वत शिखर से झरती रहूंगी सरसाती रहूंगी सोना बरसाती रहूंगी।
4: अब हम होगेन कल प्रपात मेकेदाटू सेलम चिदम्बरम आदि स्थानों को पार कराए। कावेरी नदी के किनारे किनारे चलते चलते बरगरे कुरंगाडु दुरे तुरप्पन तुरती पांडी कोड़ीमुड़ी वलंजुली कुंभकोणम आदि शिव स्थलों को भी देख आए।
5: हाँ अब यहाँ के बांध भी देख लेंगे, मेट्टोर जाडरपाल्यम मोकुंबू और ग्रांड एनिकट भी देख लेंगे।
4: अच्छा
5: हम मेट्रो अणकट देकर अब मोकुंबू पहुंचे हैं। ये देखिए श्री मुत्तस्वामी मेट्टूर जलाशय के कार्यकारी अभियंता यहाँ हैं, इनसे भेंट कर लें।
4: नमस्कार।
9: मेट्रो डैम विथ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 93 टीएमसी द मैक्सिमम हाइट इज 120
10: मेट्टूर बांध की ऊंचाई 120 फुट है। इसका जल संग्रहण सामर्थ्य 93 टीएमसी है। चूंकि इसको बनाने वाले इंजीनियर का नाम स्टैनली था इसको स्टैनली जलाशय भी कहते हैं।
5: हमने सुना है कि ईसवी सन 2 सदी में कावेरी पर कोई बांध बनाया गया।
9: दिस कावेरियम इज हैविंग दिस ग्रैंड एनिकट बिल्ट बाय करियल चोला एंड देयर इट
10: कावेरियम पर ग्रैंड एनिकट है। इसको करिकाल चोला ने 2 शताब्दी में बनाया था। यहाँ कावेरी के 3 भाग हैं, कावेरी, वेन्नार और ग्रैंड अनेकट नहर।

0: तीसरा मानव निर्मित है ग्रांड अनेकट नहर। इसको 1933 में बनाया। इस जिले में 36 उपनदियां हैं।
1: वहाँ नदी के पार्ट पर आप सीधे देखिए दक्षिण की ओर।
2: देख रहा हूँ और आपका इशारा भी समझ गया।
1: हाँ।
2: यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जो मंदिर का गोपुर है,
1: हाँ,
2: वो यहाँ से भी दिखाई पड़ता है। चलिए वहीं चलें, वो श्रीरंगम के मंदिर का गोपुरम है। पहले यहाँ के प्रधान आचार्य श्री रामानुज परंपरा के गुरुवर जी पुंडरीकपुरम आश्रमम श्रीमत आंडवन स्वामीगढ़ से मिल लें।
1: स्वामी जी, आप श्री रंगनाथ स्वामी जी के बारे में कुछ कहें।
3: अयोध्यातः रामाराधितः श्री रंगनाथः कावेरी मध्ये श्रीरंगाख्ये प्रणवाकार विमाने सदा शयानो वर्तते।
1: और कावेरी के बारे में?
3: अस्माकं पाप निवारण पूर्वकं पावनत्वेन उपनिषद प्रसिद्धासु नवसु नदीषु कावेरी अन्यतमा।
2: स्वामी जी का आशय है पाप निवारण करने वाले उपनिषद में प्रसिद्ध नौ नदियों में कावेरी का विशेष स्थान है।
3: अस्याः प्रभावं तुला कावेरी पुराणं विशेषतः वर्णयति। कावेरी त्वयमाश्रित्य वातो यत्र प्रवर्तते तद्देशवासिनां मुक्तिः किमु तत्तीरवासिनां।
2: वाह, कावेरी पर बहने वाली वायु जिन जिन देशों पर चलती है वहां के लोगों को मुक्ति मिल जाती है, फिर उसके तट पर निवास करने वाले लोगों का क्या कहना।
1: नमस्ते स्वामी जी, अब हम श्री रंगनाथ के दर्शन कर लें।

0: कैसी भव्य मूर्ति है। ऐसी सुंदर मूर्ति को जो ना देखे उसका जीवन ही व्यर्थ है।
1: आपने ठीक कहा, शायद इसीलिए इस मूर्ति को देखकर श्रीपाद राय की जिह्वा से तत्काल निकला था, गंगलिर्द्यातको कावेरी रंगना नोड़दा। वे आंखें ही क्यों जिन्होंने श्री रंगनाथ की मूर्ति को न देखा हो।

0: हाल ही में यहाँ इस मंदिर पर 236 फुट ऊंचा गोपुरम बनाया गया।
1: इसी गोपुर को हमने मोकुम्बु से देखा था।
0: हाँ,
1: लगता है हम तिरुच्ची पीछे छोड़ा है, तंजावर पहुंच गए। मैंने सुना है कि यहाँ पर मध्ययुगीन कोई लाइब्रेरी है।
0: हाँ, सरस्वती महल ग्रंथालय।
2: दिस इज वन ऑफ द फ्यू मेडिवल लाइब्रेरीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज।
3: यह मध्ययुगीन ग्रंथालयों में से एक है। इसमें 45,000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं। इनमें से बहुत सारे संस्कृत में हैं, 30,000 तो संस्कृत में हैं, बाकी तमिल, मराठी और तेलुगु में हैं।
0: इसकी स्थापना विजयनगर के नायक राजाओं ने करवाई, फिर शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसको संरक्षण और विस्तार प्रदान किया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कावेरी के किनारे वाले मंदिरों में प्रमुख है। यहाँ एक और प्रसिद्ध मंदिर है।
1: कौन सा?
0: बंगारू कामाक्षी का।
1: अच्छा,
0: इसकी प्रसिद्धि का एक दूसरा भी पहलू है।
1: वो क्या?
0: जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर की काली की उपासना करते थे,
1: हाँ,
0: वैसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में एक श्री श्यामा शास्त्री जी भी कामाक्षी के पुजारी थे।
1: कर्नाटक संगीत के तीन मूर्ति संत त्यागराज, मुत्तु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, तीनों तंजावुर के थे?
0: दोनों थे ही, पर तीसरे भी यहाँ से दूर नहीं थे।
1: अच्छा,
0: कुछ ही किलोमीटर के फासले पर एक स्थान है तिरुवायूर।

0: कावेरी के किनारे संगीत और शिल्प कला तो सदियों से समृद्ध बनती रही, पर संस्कृत शिक्षा की धारा भी यहाँ के गांवों में शिष्यों में जलसिंचन के साथ साथ बहती रही। यहाँ कुछ ब्राह्मणों के अग्रहार बने। ऐसा एक अग्रहार है महादानपुर, वहां मेरे एक मित्र हैं श्री राजाराम।
1: यह महादानपुरम में और आसपास के गांवों में ब्राह्मण लोग यजुर, साम, ऋग, वेद अभी भी गाते हैं। कावेरी हमारे लिए केवल जलधारा नहीं किंतु जीवन दात्री है। अगर इसका जल इस क्षेत्र को नहीं मिलता होता तो यहाँ की जमीन बंजर हो जाती। यहाँ जो हरियाली दिखती है वह नहीं होती। यहाँ के जीवन में संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होता।
2: यहाँ अब भी संस्कृत के विद्वान रहते होंगे।
0: यह है श्री राधा कृष्ण, यहाँ के ITI के संचालक। इतिहास के प्राध्यापक थे पर उसे छोड़कर पारंपरिक जीवन में ढले हैं।
3: पुण्यतीर वासात सद्गुणाः पापक्षयं पुण्यलाभः प्रवर्तते। जाह्नवी तीरे तीरात्र वासात यामुने भांजरात्र वासात पापक्षयं पुण्यलाभः किंतु सद्य पुनाद कावेरी पापमा मरणांतिकम्।
0: जिस प्रकार कर्नाटक में कावेरी मंड्या जिले में हरित क्रांति लाई, उसी प्रकार तमिलनाडु में तंजावुर तिरुचिरापल्ली जिलों में कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। विष्णुपेट के प्रगतिशील किसान श्री एस वेणुगोपालन कहते हैं,
4: एक ग्राम कल्याण कड़क त्रिवारोटल 10 मील
5: यह गांव तिरुवायूर के पूर्व में 10वें मील पर है। इसका नाम विष्णुपेट है। उस जमाने से यहां कृषि मुख्य पेशा रही है। विष्णुपेट एक जमाने में अग्रहार रहा। तब वेद पढ़ाने वाले पंडित कृषिक भी थे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आजकल हम 1 हेक्टेयर में 9 टन धान पैदा करते हैं और इसीलिए हमारा गाँव विष्णुपेट की जगह 9 टन गाँव कहलाता है।
0: कावेरी के किनारे लालगुड़ी एक गांव है, वहां के प्रगतिशील किसान कनक सभे से आपको मिला देंगे।
6: The Kaveri is a very important river that is running in our Tamil Nadu.
7: कावेरी तमिलनाडु में एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है। तमिलनाडु में विशेषकर तिरुची और तंजावुर जिलों में सिंचाई के कारण अच्छी कृषि होती है। यहाँ केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं सारे भारत के उपयोग के लिए धान पैदा करते हैं।
2: अब आप यहाँ से कहाँ ले जाएंगे हमको?
0: कावेरी जहाँ सागर में मिल जाती है।

0: वहां जाने से पहले तंजावुर के कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री डी बालसुब्रमण्यम से मिल लेंगे।
1: In the year 1934, the metro dam was constructed and also GA canal was introduced.
2: 1934 में मेट्रो बंद बनाया गया, ग्रैंड एनेकट नहर भी बनी। इससे पहले 4 से 4.5 लाख हेक्टर में कृषि होती थी। 1934 से पहले यहाँ वर्षा पर आधारित कृषि होती थी, अब यहाँ धान की खेती होती है। 1960 के बाद साल में 2 फसल लेने का क्रम चला, क्योंकि नहर के द्वारा जल की आपूर्ति का भरोसा हो गया।
3: तो हमारी यात्रा तल कावेरी से शुरू हुई और अब अंत होगा
0: पूम फुहार पर, जहां कावेरी सागर में समा जाएगी।
3: हमने कावेरी के उद्गम को देखा तल कावेरी में, जहां केवल पानी का एक छोटा सा स्रोत था, उसका विशाल पात्र देखा मोकुम्भ में, श्रीरंग में। अब यहाँ कावेरी एक पतली धारा बने।
0: श्री नागराजन अपनी पुस्तक कावेरी में कावेरी के सागर संगम का यो वर्णन करते हैं।
2: बहुत पहले कावेरी माँ से मिलने को आतुर एक किशोरी के समान दौड़ लगाती, इसके वक्ष से लग जाती, किंतु आज समुद्र पीछे हट गया है और कावेरी एक पतली सी धारा बनकर बालू का राशि में से जगह बनाकर समुद्र की ओर बढ़ती है। इस दशा में उस गरिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: शिव महिमा, महिमा।
1: प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

महादेव शिव की महिमा के पिछले अंक में आप पार्वती की सखी चंचला के मोक्ष और उनके द्वारा पूर्व जन्म में बिंदु के शिव धाम प्राप्ति की कथा सुन चुके हैं। आज के कार्यक्रम में हम सर्वेश्वर शिव की उत्पत्ति और त्रिदेव की सृष्टि के बारे में बताएंगे। ये प्रकरण रुद्र संहिता के छठे अध्याय से आरंभ होता है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।

0: हे शौनक, वो रुद्र एक ही है जो दूसरे का आश्रय नहीं लेता, वही सारे लोकों पर शासन करता है। उसी ने संपूर्ण लोकों की रचना की है, वही उनकी रक्षा करने वाला है और प्रलय काल में हिंसा को अपने में समेट लेता है। वो असंख्य आंखों वाला, अनेक मुख वाला और आकाश तथा पृथ्वी की सृष्टि करने वाला एकमात्र देव है।
1: हे महामुनि, आप कृपा कर मुझे सृष्टि के आरंभ में सदा शिव के उदय की कथा सुनाइए।
0: हे शौनक, सृष्टि के आरंभ से पूर्व चारों ओर केवल अंधेरा था। न पृथ्वी, न आकाश, न अग्नि थी, न वायु, और जल की सत्ता भी नहीं थी। न दिन होता था, न रात, कहीं कोई चर और अचर का चिन्ह भी दिखाई नहीं देता था। उस समय जो एकमात्र सत्य है, उसी का प्रभाव था। वो सत्य नाम और रूप से नहीं जाना जा सकता था। निराकार और निर्विकार होने के कारण उस सत्य के मन में एक आकार ग्रहण करने की इच्छा हुई। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक आकार की कल्पना की।
2: हे शिवा, यही है वो घड़ी जिसमें हमें किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सारे संसार के संचालन का भार रखकर हम केवल इच्छा के अनुसार विचरण कर सके।
3: हे सदाशिव, आपका ये संकल्प अति उत्तम है। ऐसा करने पर नई सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी रक्षा सहज ही संभव हो जाएगी।
2: शिवा, मुझे ये अमृत घट दो, अपने बाएं हाथ के 10वें अंग से मैं एक पुरुष प्रकट करता हूं।

0: हे स्वामी, आपने मुझे ये दिव्य रूप दिया है, अब मेरा नाम निश्चित कीजिए प्रभु और मुझे काम भी बताइए।
1: सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे अनेक नाम होंगे।
0: सदा शिव की जय हो। अब मुझे क्या करना होगा भगवान?
1: हे विष्णु, तुम हरि तपस्या करो, क्योंकि तपस्या ही सारे कामों को पूरा करती है। तुम्हारी तपस्या के फल से तुम्हारे शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलेंगी और वही सृष्टि के आरंभ का समय होगा।
0: जो आज्ञा सदाशिव।

0: हे शिवा, देखो विष्णु के तप के प्रभाव से सारी पृथ्वी पर जल ही जल प्रकट हो गया है। उसी जल में रहने के कारण विष्णु का दूसरा नाम नारायण भी होगा।
1: हे सदाशिव, भगवान नारायण के जल में शयन करने से सृष्टि का आरंभ कैसे होगा?
0: तुम्हारा प्रश्न सही है शिवा। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मैं भगवान विष्णु की नाभि से एक उत्तंक कमल को प्रकट

0: हे सदाशिव, मुझे एक उत्तंक कमल दिखाई दे रहा है और इस कमल के बीच एक आकार, ये कौन है?
1: हे शिवा, यही एकात्म ब्रह्म तत्व है, जिसे ब्रह्मा नाम देना उचित होगा, क्योंकि इनका जन्म कमल से हुआ है, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाएगा। इनके चार मुख होंगे और इन्हीं के माध्यम से सृष्टि का कार्य आरंभ होगा।
2: मेरा जन्म कमल से हुआ है, लेकिन मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है? जिसने मुझे पैदा किया है उसका पता लगाना चाहिए। ऐसा करता हूं, इस कमल नाल के सहारे सहारे चलकर मैं इसके जन्मस्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता हूं। इस कमल नाल का तो अंत ही दिखाई नहीं देता, अब मैं क्या करूं?
3: तप करो, तप करो, तप करो।
2: यह आकाशवाणी संभवतः मुझे रास्ता दिखा रही है, मुझे तपस्या करनी चाहिए।
4: अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि।

0: ओ, ये चार बाहों और सुंदर नेत्र वाले कौन जिन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं? हे प्रभु, मैं आपकी छवि पर मोहित हूं। आप कौन? मैं विष्णु हूं और भगवान सदाशिव की इच्छा से मेरी ही नाभि से उपजे कमलनाल से आपका जन्म हुआ है। आप ब्रह्म स्वरूप हैं, इसीलिए आपका नाम ब्रह्मा है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तो मैं सृष्टि का आदिदेव हुआ। फिर मेरा जन्म आपकी नाभि से उपजे कमल से कैसे हुआ? हे ब्रह्मा, आपके जन्म से पूर्व भगवान सदाशिव ने मुझे आकार दिया, किंतु मैं आदिदेव हूं, फिर भी मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता क्या जन्म के समय पर आधारित होती है?
1: इसका निर्णय आप और मैं दोनों नहीं कर सकते। ये विवाद का विषय है देव।
0: कैसा प्रकाश? हाँ, जैसे संपूर्ण सृष्टि अग्निपिंड में बदल गई है। इतना विशाल अग्निपिंड, इसके तो आदि और अंत का कुछ भी पता नहीं चलता। हमें पता लगाना चाहिए। प्रयत्न करता हूँ, तो इसका तो और छोर ही नहीं मिलता।
2: हाँ हाँ, मैं भी नीचे से ऊपर लौट आया हूँ। क्यों ना ऐसा करें कि इस अग्निपिंड की परिक्रमा करें।
0: देव, इसका आकार इतना विशाल है कि परिक्रमा संभव नहीं लगती।
2: ये क्या है देव? इसका क्या नाम है?
0: हाँ, चलिए ध्यान के मार्ग से इसके स्वरूप का पता लगाते हैं। चलिए इस अग्नि स्तंभ की स्तुति करते हैं।

हम आपका स्वरूप नहीं जानते। आप जो भी हैं, आपको हमारा नमस्कार। आप हमें अपने

इस ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में अकार है, मध्य में उकार है और अंत में मकार। इन तीनों की ध्वनियां मिलकर ओम नाद में परिवर्तित होंगे। लगता है यही नाद इस ज्योतिर्लिंग से फूटा है। आओ इस नाद की उपासना करें।

0: है वो परम तत्व जिसकी उपासना हम दोनों कर रहे हैं।
1: ये परम ज्योति स्वरूप निराकार भगवान शिव ही है। आओ आओ इनकी स्तुति करें।

तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आओ संसार का कल्याण करने वाले 24 अक्षरों से युक्त गायत्री मंत्र की रचना करें, जो तीनों लोकों में चर और अचर के मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा।

0: हे देवों में श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा और हे नारायण, चलिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना कीजिए, जो संसार के सभी प्राणियों को काल के भय से मुक्त कर दे और मेरे चरणों में उनकी भक्ति दृढ़ करे।
1: जैसी आज्ञा सदाशिव।

0: हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए। और वस विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन करते रहिए। सारे संसार में आपकी साकार पूजा हो।
1: हे सदाशिव, संसार के प्राणियों के हित के लिए आपका स्वरूप क्या होगा?
0: मैं ही सृष्टि का पालक और संहार करता सगुण भी हूं और निगुण भी। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा हूं। संसार के संचालन के लिए तीन रूपों में विभक्त हुआ हूं।
1: हे सदाशिव, क्या संसार के संहार के लिए आपका यही रूप चराचर में जाना जाएगा?
0: ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर से मेरा एक और रूप प्रकट होगा जो रुद्र कहलाएगा। मेरे ही अंश से प्रकट हुए रुद्र की शक्ति मुझसे कम नहीं होगी।
1: हे शिव, आप निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, किंतु साकार रूप में भी आप महेश्वर के रूप में अवस्थित होंगे। संसार के लोगों के लिए कहीं ये भ्रम का कारण तो नहीं बन जाएगा?

विष्णुदेव, वो एकात्म शक्ति ही तीन रूपों में विभाजित है, इसलिए ब्रह्म की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है और हे विष्णु, आप उसके पालन करता है और मैं कल्याणकारी होते हुए भी प्रलयकारी भी हूं, इसलिए संसार के लोग सबसे पहले ब्रह्मा, फिर आपकी और तत्पश्चात मेरे साकार रूप शंकर की आराधना करेंगे।

0: हे सदाशिव, सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन के लिए क्या केवल सततत्व ही पर्याप्त होगा?
1: हे शिव, माया के अभाव में संसार की कार्य सिद्धि क्या संभव है?
2: हाँ देव, ब्रह्मांड के संपूर्ण स्वरूप के लिए माया तो आवश्यक है। इसके लिए प्रकृति ही देवी उमा के नाम से जानी जाएंगी। इन्हीं की शक्ति वाग्देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी, जिन्हें संसार के प्राणी सरस्वती के रूप में जानेंगे। फिर इन प्रकृति देवी से जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। इसके बाद काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वो मेरे अंश रुद्रदेव को प्राप्त होंगी।

0: हे शौनक, मैंने तुम्हें सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाई। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव के ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप से अंधकार का नाश हुआ और समस्त संसार प्रकाशमान हो उठा।
1: हे महाभाग सूत जी, प्रकाशित संसार में सत्य और असत्य की महिमा को आपने ब्रह्म और माया के रूप में बताया, इसका क्या रहस्य है?
0: हे शौनक, जिस तरह अंधकार के अभाव में प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह असत्य के बिना सत्य का कोई महत्व नहीं, और जीवन के अस्तित्व के लिए भी मृत्यु का होना अनिवार्य है। यही संपूर्ण सृष्टि के संचालन का रहस्य है। इसी सत्य को वेदों में इस तरह कहा गया है।
2: ओम असतो।

0: दोनों ही देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का।
1: हे महामुनि, ये लिंग स्वरूप शिव कहां कहां विराजमान हैं और इनकी महिमा क्या है?
0: हे शौनक, शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता के प्रसंग के अनुसार देवर्षि नारद ने जिन शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन किया और पृथ्वी की परिक्रमा की,

0: हे सूत जी, कैलाशपति शंकर के लिंग रूप के बारे में विस्तार से जानकर अत्यंत सुख मिला। कृपा पूर्वक बताएं कि उनके अन्य रूपों का आधार क्या है।
1: महामुनि शौनक, आपका ये प्रश्न सहज और स्वाभाविक है। इसके संबंध में अगली बार विस्तार से बताएंगे।
2: श्रोताओं, शिव पुराण के रुद्र संहिता के आरंभिक अध्यायों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के महत्व को बताया गया था। अगले प्रकरण में मनु तथा शत्रुपा और सती और शिव की महत्ता को बताया जाएगा।

जपियो जिन अर्जुन देव।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

चिरौरी मामा के पिघलावे, मूड़ी पटके करे चिरौरी मामा के पिघलावे, गाँव से काम बनाओ मल चाहे गाँव का बात बताओ, गाँव से काम बनाओ।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदरायना पुत्र श्री कृष्ण ने अमारा पति बनाओ, अमे तमने प्रणाम करीए छी। आ कात्यायनी नो संदर्भ श्रीमद भागवत में आवी रीते जोयो। मातंगी देवी, मातंगी

अर्थात ते अग्निसमान वर्णवाळा ज्ञानथी जळहळता दीप्ती प्रकाशशाली कर्मफलनी प्राप्तीना हेतु माटी सेवाता असुरोना नाशक ए दुर्गा देवी ने प्रणाम करी छी।

आ भगवती कात्यायनी स्तुति सप्तशती चंडी पाठ में अपन अग्यारमा अध्याय में बहुत सुंदर मळी आवे छे, एना थोड़ा श्लोकों नु पण अहीं निरूपण करीशुं।

एक अत्यायनी देवी, चंद्र सूर्य आणि अग्निरूप त्रण नेत्रोथी विभूषित आपनु आ सौम्य वदन सर्व प्राणी मात्र थी।

शरणागतनी पीड़ा हरनारा देवी आप प्रसन्न था। समस्त जगतनी माता आप प्रसन्न था। विश्वेश्वरी प्रसन्न था। हे महादेवी तमे चराचर जगतना स्वामीनी छो। विश्वनु रक्षण करो।

हे परांबर, तमे आ जगत पृथ्वीनो एकमात्र आधार छो। हे अलंघ्य पराक्रमवाला देवी, जल स्वरूप में रहेला अपना थी अखो विश्व विकसित करी तृप्त करी देवाय छे। हे परमेश्वरी।

हे कात्यायनी देवी, हे देवी, अनंत पराक्रम वाला आप वैषमी शक्ति छो, विश्वना कारण रूप आप मूल प्रकृति छो, अखा जगत ने आपे मोहित करी नाख्यू छे।

हे महादेवी, समस्त विद्याओं आपनु भिन्न भिन्न स्वरूप छे। जगत में जेटली स्त्रीओ छे ए तमारा ज स्वरूप। आहा, कितलो भव्य विचार। खरेखर नारी मात्र नु सम्मान कितलू बधु अहीं करवामां आव्युं छे। कदाचित नर ए क्रोध होय पण नारी ए शांति छे। नर ए गृहपति छे तो नारी गृहलक्ष्मी छे। लज्जा, विनय, संयम, संतोष, क्षमा, मित मधुर संभाषण तो ए साथे ज समता, सहिष्णुता, निरभिमानिता, श्रमशीलता, मितव्ययिता, उदारता, सेवा, शुश्रूषा आदि गुणों थी विभूषित दरेक नारी समाज नी शोभा पराम्बा नु स्वरूप। आ संदर्भ में

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ओम नमः शिवाय। इस विशाल ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक, सर्वोच्च शक्तिशाली, आदि और अनंता, देवादिदेव महादेव की महिमा का वर्णन तो वेद पुराण और शास्त्र भी नहीं कर सकते हैं। सुर असुर मानव और दानवों के इष्ट देव करुणामयी भगवान सदा शिव ऐसे महादानी और वरदानी हैं कि जिनकी स्तुति संपूर्ण करने के लिए अनंत जन्म भी कम पड़ जाएंगे। किंतु यह भी सत्य है कि भगवान शंभुनाथ की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री शिव चालीसा सर्वोच्च और शुभ फलदायी माना गया है। श्री शिव चालीसा का पाठ सुनने वालों के लिए उतना ही कल्याणकारी है जितना कि पाठ करने वालों के लिए। इसका नियमित पाठ करने से सभी प्रकार के मनोरथ, जैसे घर में सुख शांति, धन यश वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ सभी प्रकार के रोगों और दोषों का सर्वनाश भी होता है। जिस प्रकार भगवान शिव किसी एक जाति या धर्म विशेष के नहीं है, वो तो सभी के इष्ट हैं। ठीक उसी प्रकार श्री शिव चालीसा की स्तुति का समान रूप से अधिकार इस चराचर जगत के सभी मानवों को है। मन के पावन भाव से की गई भक्ति से हर्षाने वाले

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।